असंख मूर्ख अंध घोर संघ जोर राम घोर संखे अमर कर जाए जोर असंखा गाल बढ़ हत्या कमाए।

लालच छड़े हो एक मन रखती आई है फलते वे हो पाए जे वे कार कमाई जे हो प्रभु लिख्या था तो वो तू गांधी पाई है मत थोड़ी सेवा गवाई है मत थोड़ी।

0: सिमरन तृष्णा बुझे,
1: प्रभ के सिमरन सक सूझे,
0: प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा,
1: प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा,
2: प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा,
0: प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा,
1: प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा,
0: प्रभ के सिमरन मन की मल जाए,
1: अमृत नारद माहे समाए,
0: प्रभ जीव से साध की

0: पृथ्वी फिरे चिर जीव
1: महादास्तपि सर्तिव
0: अग्न माहे होमत प्राण
1: कनक सब है वर होम दान
0: न्यूली कर्म करे बहु आसन
1: जैन मार्ग संयम अत साधन
0: निमक निमक कर शरीर कटावे
1: तभी होमे मैल न जावे
0: हर के नाम सम सर्क छनाहे
1: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे
0: मन कामना तीर्थ देह छुटे
1: दर्प माना मानते हुटे
0: सोच करे दिन

0: को प्रभु दर्श प्यासा
1: नानक ताके बल बल जासा
0: सगल पुरख में पुरख प्रदान
1: सत्संग जा का मिटे अभिमान
0: आपस को जो जाने नीचा
1: सोई धन में सबते ऊंचा
0: जाका मन हुए सगल की रीना
1: हर हर नाम तिन कट कट चीना
0: मन अपने ते बुरा मिटाना
1: देखे सगल श्रेष्ठ साजना
0: सुख दुख जन समृष्टि

0: स्वामी
1: अपनी गत मित जन हो आपे
0: आपन संग आप रवराते
1: उमरी उस्त तुम ते होए
0: नानक अवर न जान सकोए
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
0: हर को नाम जप निर्मल कर्म
1: सर्व क्रिया में उत्तम

0: सर पर होवत जान अनेत।
1: छाया से ओ नंग लावे,
0: ओ बिन से ओ मन पछतावे।
1: ओ दिसे सो चालन हार,
0: लपट रहो ते अंध अंधार।
1: सो जो लावे नेह,
0: ताको हाथ न आवे के।
1: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई,
0: कर कृपा नानक आप ले लाई।
1: मिथ्या तन तन कटंब

0: सुवस्त्र
1: मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता
0: मिथ्या त्रो मोह अभिमान
1: मिथ्या आपस ऊपर कर्त गुमान
0: अस्तर भक्त साध की शरण
1: नानक जप जप जीवे हर के चरण
0: मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने
1: मिथ्या हस पर दर्प को हिरे
0: मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय पाद
1: मिथ्या रसना भोजन नान स्वाद
0: मिथ्या जन पर विकार को तावे
1: मिथ्या मन पर लोभ लभावे
0: मिथ्या तन नहीं पर उपकारा
1: मिथ्या बास लेख भिकारा
0: मिथ्या

0: प्रसाद सब की गत होए।
1: नानक जाप जपै जप सोए,
0: आप जपाए जपे सो नाओ,
1: आप गवाए सो हर गुण गाओ,
0: प्रभु कृपा ते होए परगास,
1: प्रभु दया ते कमल विगास,
0: प्रभु सो प्रसन्न बसे।

साको सव्यंतर सब ठाई हो गुंगे महा अमृत रस चाख्या पूछे कहन न जाई हो बेडी के गुण सुन रि बाई जल्द बांधु था पे हो नामे के स्वामी सी बहोरी लंका पपीखण आप्य हो सोरठकार तीजा अन्न मड़िया मंदर बाजे बिन सावण कन हर गाजे बादल बिन बरखा होई जो तद बिचारे कोई मोको मिल्यो राम स्नेही जय मिलिये देहे सो देही रहाओ मेल पारस कंचन होया मुख मनसा रतन परोया निज पाओ पहाओ परम भागा गुरपूछे मन पतियागा जल पीतर कुंभ समान्या सब राम एक कर जान्या गुरु चेले है मन मान्या नामे तत पछान्या राग सोरठ

भाव। जौ तुम दीवरा तो हम बाती, जौ तुम तीर्थ तो हम जाति। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। जह जह जाओ तहां ते सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। तुमरे भजन कट जम फंसा, भगत हेत गावे रवदासा। जल की पीत पवन का थंबा।

पवन चवरो करे सगल बनराई फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पाव खंडाओ तेरी आरती अनहत शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तोहे कौ सहस मूर्त नन्ना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध

0: बुलागी क्या हम किरम
1: नान देखो कीर तुमर पुरख बुलागी तुमरी गात में तो कह न सके प्रभ
0: हम क्यों कर्म ले भागी हर प्रभ स्वामी कृपा तारो
1: हम हर हर सेवा लागी नानक दासन
0: दास करो प्रभ
1: हम हर कथा कथा गी त्रासी महला चौथा
0: हर का संत सत गुर सत पुरखा
1: जो बोला हर हर बानी जो जो कहे सुने सुमुखता
0: हम तिस कह साधु कुरबानी हर के संत सुनो जस कानी हर

हर हर बूंद पै हर स्वामी हम चातर का बिलल बिललाती हर हर अपन हर हर कृपा करो प्रभु अपनी मुख देवो हर निम खाती हर बिन रह न सको एक राती जो बिन अमल अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ तुम हर सर्वर अत अगाहा हम लह न सके अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जन अपन गाती हर के संत जना हर जपयो गुरंग चलू ले राती हर हर भगत बनी अत सोभा हर जपयो उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरनाई हरा को लाज पगाती त्रासी महला चौथा कल जो का धर्म कहो तुम पाई केव छूट हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर

संत मारी हनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बोध पतीस कोट मुन जन सब चाहे हर जीव तेरो नाव गुर प्रसाद को बिरला पावे जिन को ललाट लिखिया तुर पाव जप मन रामे नाम हर जस उत मुकाम जो गावे सुने तर जस स्वामी ओ तन कह सद बलिहारे जाव रहाओ शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देव सोई हो पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरन कह चाओ नासरी महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवै सब गाव है हर हर उत्तम बानी गावे सुनिया तिनका हर थाए पावै जिन सतगुरु की आग्या सत सत करमानी बोलो भाई हर कीरत हर भवजल तीर्थ हर दर्शन की

0: प्रीत प्रेम उपजे प्रीत प्रेम रस चाओ।
1: त्रासरी महला चौथा ईसा पूर्व सर्व सुखदाता हारो जाके वास है काम ते नाल सवै सहर
0: त्याइए।
1: जप मन सतनाम सदा सतनाम फलत पलत मुखी उजल हुई है नित्याई हर पुरख निरंजना रहाउ। जय हर सुमन प्यात है उपाद गत कीनी वड पागी हर जपना। जन नानक का गुरे मत दीनी जप हर जल तरना। तना श्री महला चौथा मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। हमरी बेदन तू जानता साहा अवर क्या जाने कोई रहाव। साचा साहब सच तू मेरे साहा तेरा किया सच सब होए। झूठा किस को आके साहा दूजा नाही कोए। सबना वे तू वरदा साहा सब तुझे त्यावे दिन रात। सब तुझ ही थाओ मंग दे मेरे साहा तू सबना करे कदात। सब को तुझ ही विच है मेरे साहा तुझ ते बाहर कोई ना है। सब जी तेरे

रहाओ, कोट पराद हमारे खंडो अनक विधि समझाव हो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बृद रखाओ, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सोहेले रख हो। रखन हर दयालाओ नानक करके गोले, तना श्री महला पंजवा पूजा वरत तिलक इशनाना।

मंडल महयाए जन्म पदार्थ दुविधा खोवै आप न चीन स ब्रह्म ब्रह्म रोवै कहतो पढ़तो सुनतो एक तीर्थ धर्म तरनी तर टेक जत सत संयम हृदय सुमाए चौथे पद को जे मन पति आए सचे निर्मल मैल न लागे गुर कै शब्द परम पाओ भागे सूरत मूर्त आदि अनूप नानक जाचा सच स्वरूप तना श्री महला पहला सहज मिले मिलया परवान ना ते सुमरन नयावन जान ठाकुर मैं दास दास मैं सोए जय देखा तय अवरन कोय गुरमुख भगत सहज कर पाइये बिन गुर भेटे मर आइये जाइये रहाओ सो गुर करो जे साच दृढ़ आवे अकथ कथावे शब्द मिलावे हर के लोग अवरनी कारा सचो ठाकुर सच प्यारा तन मै मनवा मन मै साचा सो साचा मन साचे राचा सेवक प्राव के लागे पाए सतगुरु पूरा मिले मिलाए आप दिखावे आपे देखै हठ नाम पतिजय नाम बो भेखै घड़ भांडे जिन अमृत पायाओ प्रेम भगत प्रभ मन पति आयाओ पड़ पड़ फूलै चोटा खाहे बहुत स्याण पयावे जाए नाम जपे पो भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिलाओ तीर्थ बनवासा परम डोलत पय उदासा मन मैल सूचा क्यों होए साच मिल पावे पत सोए आचारा विचार शरीर आदि जुगाल सहज मन धीर पल पंकज मैं कोट उधारे कर कृपा गुरु मेल प्यारे किस आगे प्रभु।

तीर्थ नामन जाओ। तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान सच अथान तीर्थ दस पूर्व सदा दशहरा हो नाम हर का सदा जाचो देहु प्रभ तरनी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना

0: साध संगत के अंचल लावो, भिख मंद दी जाए तरनी, सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मैं तरनी, हर दर्शन तृपत नानक दास पावत, हर नाम रंग आपरनी, जद श्री महला पंजवां, हर जन सिमरो हिरदे राम, हर जन को अपदा निकट न आवै, पूर्ण दास के काम रहाउ, कोट बिगण बिन से हर सेवा, निचल गोविंद धाम, भगवंत भगत को पहो किस नाही, आदर देत जाम, तज गोपाल आन जो करनी, सोई सोई बिन सत खाम, चरण कम हृदय गो नानक सुख सुन विश्राम, जय श्री महला नौवा एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद भूलो मन माया उरजायो, जो जो कर्म कियो लालच लागो, ते ते आप बंधायो रहाओ, समझ न परी बेखे रस रसयो, हर जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहे न बंद, खोजन को तायो, रतन राम काटी के पीतर, ताको ज्ञान पायो, जन नानक भगवंत भजन बिन बिरता जन्म गवायो, जय श्री महला नौवा, हर जू राख लिहो पत मेरी, जम को त्रास हो पयो अरंतर, शरण गही कृपा निद तेरी रहाओ, महा पतत मुगद लोभी फोन, करत पाप अबहारा, पै मरबै को बिसरत नाहे न, ते चिंता तन जारा की, ओ पाप मुगत के कारण, दह दिस को उठ तहाया, काट ही पीतर बसे निरंजन, ताको मर्म न पाया, नाहे न गुण नाहे न कास जाप ताप, कौन कर्म अब कीजे, नानक हार परे नानक
1: वाहिगुरु साहिब जीओ। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माई, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तां पाया, सह सेती मनमजियां माधाइया, राग रतन परवार परियां, शब्द गावने आईया, शब्द तां गाव हरी कीरा, मन जनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया,